0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक कलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक कलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक कलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
2: बैंक कलबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
1: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक कलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात।

0: करने का मौका पाओगे,
1: जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600cc कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस।
2: इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
1: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण और तुंजे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए बुड़ी 347-32-41-230।
6: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
8: सुनते रहो GFM 90.4।
9: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल।
6: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
8: सुनते रहो GFM 90.4।
9: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। सूरत अल अनआम मक्की सूरत है, 20 रुकू हैं, 165 आयात हैं। सूरत मायदा तक एक तरह का मजमून चलता है, फिर सूरत अल अनाम से मौजू बदलता है। यहाँ से सूरतों का दूसरा ग्रुप शुरू हो रहा है।
7: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। आप सुन रहे हैं GFM।
9: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। सूरत अल अनआम मक्की सूरत है, 20 रुकू हैं, 165 आयात हैं। सूरत मायदा तक एक तरह का मजमून चलता है, फिर सूरत अल अनाम से मौजू बदलता है। यहाँ से सूरतों का दूसरा ग्रुप शुरू हो रहा है।

जीअं सम्झा पाकिस्तान जी सरज़मीन तमामु मिठड़ी ज़मीन आहे ऐं पाकिस्तान जी सरज़मीन में चार सूबा आहिनि। अवां सभिनी खे ख़बर आहे त चइनि सूबनि ते ॿधलु आहे असांजो प्यारो ऐं मिठड़ो मुल्क पाकिस्तान। ऐं उन में पंजाब सूबो आहे, उन में के पी के सूबो आहे जंहिंखे असां सरहद सूबो बि चऊं, ऐं बलोचिस्तान बि सूबो आहे, तमामु वॾो सूबो आहे पाकिस्तान जो। ऐं सिंध सूबो बि तमामु सुहिणो सूबो आहे, ऐं सिंध जेको सूबो आहे उहो बि पाकिस्तान जी दिलि आहे। त असां वरी ॻाल्हि कंदासीं, सिंध तारीख़ जे घणनि दौरनि मां गुज़री आहे, केतिरनि ई माण्हुनि जी तज़ाद जो मैदान बि रही आहे, के वक़्त अहिड़ा बि आया जो ज़ाहिरी संदनि बख़्त जो सितारो हमेशह लाइ लथ ॾिसण में पई आयो, पर तारीख़ शायदि आहे त उन्हनि सभिनी मुश्किलातुनि मां पार पई सिंध हमेशह पाण झलींदी उभरंदी ऐं अॻिते वधंदी रही आहे। सिंधी पाड़ेसरी रहण जा बि तमामु कोडिया आहिनि, यानी महिमान नवाज़ बि आहिनि, ऐं सिंध जा रहाकू दुनिया जी तस्लीम कयल उसूलनि मुताबिक़ जुदा गाना क़ौम आहिनि। उहे उसूल जुदा वतन, जुदा ज़बान, मख़सूस कल्चर, तारीख़, रवायत, सियासी ऐं इक़्तिसादी मफ़ाद ठाराया विया आहिनि। हिन धरती यानी सिंध धरतीअ जे माण्हुनि जा अहसास ई पंहिंजा आहिनि। सिंधुअ जे शोलनि वांगुरु तारो तार त कॾहिं वरी माटार जो अहसास बि हुननि जे जीअ में मौजूद रही आहे। त सिंधु बिल्कुलु सुहिणी सिंध आहे, सरसब सिंध आहे, ऐं सिंधु पाकिस्तान जो हिसो आहे, ऐं सिंधु महिमान नवाज़ आहे।

0: जी असमिन प्रोग्राम आहे रोशन सुबुह ऐं असांजो हीउ रोशन सुबुह ॿुधो पिया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क तां ऐं असांजो हीउ जेको प्रोग्राम मारकाई हक ऐं बनाने मरसूस जे नाले आहे ऐं असांजो हीउ प्रोग्राम पंहिंजे मिठड़े मुल्क पाकिस्तान जे नाले आहे ऐं असांजो हीउ प्रोग्राम मारकाई हक बनाने मरसूस आर्मी जे नाले आहे पाक फ़ौज जे नाले आहे ऐं असां हिन वक़्तु हलंदासीं न्यूज़ ब्रेक जी तरफ़ कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़ वरी वापसि ईंदासीं कॾहिं बि न वञिजो
1: It's 10 a.m. This time check is brought to you by...

आमना हुरमत बरपास से ईरान सा चक्र इन्वाज जंगबंदी बरकरार आए ईरान सा गाल जारी आयन वायदो कहते थी सके तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है त अमेरिका जा टे जंगी बेड़ा कामयाबी से आमना हुरमत पार कर पाया अमरीकी जहाज पा पर उनके को भी नुकसान न पे तो हमले आवर ईरानी नंढन बेड़न के तबाह कर पो ईरान नॉर्मल मुल्क न है ईरान की क्यादत जुनून के हथ में है जिनके एटमी हथियार इस्तेमाल करने जो मौके मिले हाँ तो हमले में देर न कन हाँ ट्रंप जो एक भेरों बीहर वजीर आजम शहबाज शरीफ आई फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वाह खान सदर ट्रंप जो है तो पाकिस्तानी क्यादत के चवण से अमरीका प्रोजेक्ट फ्रीडम से अमलदार मंत्रो

0: भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द लाइ दहशतगर्द तंज़ीम उनके फंडिंग करे रहियो आहे। भारत सां मौजूदा शिकाण कंहिं बि वक़्त वधीक तकरार जो सबब बणजी सघे थी। ॿिन्ही मुल्कनि खे अमुन ख़ातिर ॻाल्हियूं करणु घुर्जनि। पाकिस्तानी चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी जो फ्रांसी टीवी खे इंटरव्यू। लवल भुट्टो ज़रदारी चयो त आबराए हुकूमत वारे मसइले जो को बि फ़ौजी हल न आहे। ईरान अमरीका जंग ॿीहर शुरू थी त हुन जा असर महदूद न हूंदा। समूरी दुनिया खे हिन तकरार जा नतीजा भोगणा पवंदा।
1: वो जो हम आपको हमेशा से कहते थे किसी का बाप भी पाकिस्तान पे आंच नहीं ला सकता, जो कायदे आजम ने फरमाया था नथिंग कैन अनडू पाकिस्तान, दिस इज द स्ट्रैट कॉन्सिक्वेंसेस विच वी ईच एंड एवरीवन नो इनसाइड एंड आउटसाइड। तो जिसको कोई प्रॉब्लम है, कोई शक है, उसकी एक किस्त दिखाई है हमने, वी हैव री एस्टेब्लिश्ड, ये ठोक के हमने दोबारा डिटरेंस री एस्टेब्लिश की मिनटों में की। वो जो सवालात हमने साल पहले किए थे वो आज उसी तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, हिंदुस्तान के बच्चों के सामने, हिंदुस्तान के अवाम के सामने खड़े हैं। वो कौन लोग थे जिन्होंने कराया?
0: अल्लाह जे फजल सा कवारी जंग में पान का वे दुश्मन के हर महाज से दर्दनाक शिकस्त डी। पाकिस्तान की सलामती या खुद मुख्तियारी जो हर कीमत से दफा क्यों भी दो। DGSPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जो आया था पाकिस्तान ऐं फील्ड मार्शल ॾींहुं रात भारत जे ख़्वाब में ईंदा आहिनि। बालियान कश्मीर भारत जो हिसो न पर आलमी सतह ते मंझंदि तकरारी इलाइक़ो आहे। पाकिस्तान में थींदड़ दहशतगर्दी में भारत मुलवस आहे। पाक फ़ौज पहिरीं बि तयार हुई, हाणे बि तयार आहे। हीअ सिंदूर खां ॿाहिरि छो नथा निकिरनि? सिंदूर त औरतुनि खे लॻाए वेंदो आहे। कंहिंखे आज़माइणो आहे त तयार आहियूं। कंहिंजो पीउ बि पाकिस्तान जो कुझु बिगाड़े नथो सघे। DGSPR पारां 14 अगस्त ते फ़ौजी परेड जो ऐलान। तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी 14 अगस्त ते ताक़त जो नंढो हिसो आवाम खे ॾेखारे वियो। असां रियासत पाकिस्तान जे हथियारबंद फ़ौज आहियूं। कंहिं बि सियासी सोच जी नुमाइंदगी नथा कयूं। DGSPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी चयो आहे त पाक फ़ौज इलीट जी न पर ग़रीब जी फ़ौज आहे। सिंधास मुआदे जी कंहिंखे बि भंजकड़ी करणु न ॾींदासीं। 6 दरियानि ते सिर्फ़ पाकिस्तान जो हक़ आहे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़
1: वाले हम दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
2: छा अहां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो हाणे वक्त आहे चमकण जो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो पहरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पहजो चेहरो जीए होजे हीरो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानो सुबुह जो 10 खा रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
3: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
5: केश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
6: सुनते रहो GAFM 90.4
3: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
5: तो पोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
5: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
3: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 03132525786
5: जी हा 2315525786
3: GAFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

साईं मुझा हकीकी इल्म इंसान के संदस तारीखी हैसियत जो शौर दींदो आहे। उहो शौर तनक़ीदी हूंदो आहे पर उन जो बुनियाद सवाल जवाब ऐं पुशागाशा ते मुश्तमिल हूंदो आहे। जीअं त उन जो बुनियाद हक़ीक़ी तारीख़ी हालतुनि ते पवंदो आहे, तंहिं करे उन शौर वारो फ़र्द इज्तिमाही मुफ़ाद में तब्दीलीअ लाइ पंहिंजे चौधारी हक़ीक़ी माहौल सां वाबिस्ता थी उन खे समुझंदो आहे ऐं उन मां हिकु नओ इल्मु ऐं नओ शौर पैदा कंदो आहे। उहा ॻाल्हि तय आहे त सिखण जी ख़्वाहिश ॿार में फितरी तौर ते मौजूदु हूंदी आहे। उन ख़्वाहिश जो इज़हार हू तजसुस ऐं सुवाल जी सूरत में कंदो आहे। अहिड़नि ई नंढड़नि ज़िननि खे जवाब सुठे नमूने सां ॾियणु घुर्जे ऐं असांजी उन्हनि नंढड़नि नौजवाननि खे असांजी इल्तिजाई आहे त तालीम सां गॾु पंहिंजो पाकिस्तानी हुजणु ज़रूरी आहे, पंहिंजे मोहब वतन पाकिस्तान सां प्यारु हुजणु ज़रूरी आहे ऐं असांजी सभिनी नौजवाननि खे इहा इल्तिजा आहे त पंहिंजो जेको आहे सो पाक आर्मी सां तालुक़ु रखनि, पाक आर्मी में भर्ती थियनि ऐं पंहिंजो जेको हिसो थियनि पाक आर्मी थियनि ऐं उन में पंहिंजे मुल्क ख़ातिर जेको आहे सो कोशिश कंदा रहनि ऐं मुल्क सां जो जज़्बो आहे, जुनून आहे, उहो उन में पंहिंजे नौजवान में हुजणु तमामु ज़रूरी आहे। त समय असांजो जेको

0: It's 10:30 a.m. This time check is brought to you by
1: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aise diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
2: Pakistan ki shaan, Wadi Mehran, Mehran ki pehchan, GFM 88 Network, Sindh ki awaaz.
3: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार. सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल.
4: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद.
5: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी.
4: औलाद जो न थियण और तुंजे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे.
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली. वधिक मालूमात लाइ 2347-3241-230.
6: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी. छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो. सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो. मोबाइल नंबर 03002962435. एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली.
2: अपना शहर, अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4.
7: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
6: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
7: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल.
6: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन.
7: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा.
7: 03125252786.
6: जी हा, 2311-2525-786.
7: GFM रेडियो नेटवर्क,
6: सिंध जो आवाज़.

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छिटूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347321230।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

Muchas gracias, canal.

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
3: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GAFM 88 नेटवर्क ते।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

जी हा समय हिन वक़्तु असां उन्हनि दोस्तनि जा नाला शामिल कंदासीं जिन असां सां साथ ॾिनो आहे हिन प्रोग्राम में ऐं उन्हनि बि इहो ई चयो आहे त पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाक आर्मी ज़िंदाबाद, पाक फ़ौज पाईंदाबाद। त दोस्त आहिनि इमदाद अली दायो, रुस्तम अली गोपांग, इम्तियाज़ डोमकी ऐं अकबर डोमकी आहे लोअर कॉलोनी लाड़काने खां, ऐं रुस्तम पंवर आहे ॻोठ पनू पंवर सेवण खां, फतेह मोहम्मद कनासरो, फारूक अहमद कनासरो, फराज़ अहमद ऐं बेबी शुगफ्ता नाज कनासरो ॻोठ मोहम्मद नवाज़ धूण खां, ऐं अरीबा मुगेरी ऐं इरम कंबर सिटीअ खां, हबीबुला बुगियो लाड़काणे हबीबुला थेबो लाड़काणे खां, मंज़ूर जलबाणी, मोहम्मद इब्राहिम जलबाणी, सरमद सिंधी ऐं नंढड़ो इनाम जलबाणी ॻोठ अलह रखियो जलबाणी खां, ऐं दोस्तनि ज़ुहेब कटबर, ज़ैनुल आबदीन कटबर रहमतपुर लाड़काणे खां, नूर हुसैन तुनियो लाड़काणे खां, अलाह बचायो नुहाणी शाहपुर खां, ऐं आसिफ अली चाचड़, वासिफ अली बुगटी लाड़काणे खां, चनेसर बेहण, आज़ाद बेहण मीरपुर मोरे खां, अज़ीज़ सोलंगी मीरपुर ख़ास खां, ऐं मीरपुर ख़ास खां यासमीन मलक, ख़ालिक लाशारी पंहिंजो मीरपुर ख़ास खां, ऐं क़ुर्बान अली ख़ास कली झंडो मरी खां, रांझन कोरी वॾेरो ख़ान मोहम्मद जूणे जो मीरपुर ख़ास खां, बदरदीन केहर, नवीद केहर ॻोठ केहरनि खां, दोस्तनि जी वॾी महिरबानी। ऐं समन ई कलाम उन्हनि दोस्तनि जे नां कयूं पिया जेके चवनि पिया पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाक आर्मी ज़िंदाबाद।

जीअं सभिनि कुझु दोस्तनि जे नाला फेसबुक वारनि जा ऐं असांजो भाउ नज़ीर खोसो सोबतपुर बलोचिस्तान खां प्रोग्राम ॿुधे पियो ऐं सैद गुलामीदर शाह खां दोस्त प्रोग्राम ॿुधनि पिया। मुरीद अहमद थेबो, सदाम ख़ासकेली, जमील अहमद दिलावर, वहाब ख़ासकेली, भाइरनि जी वॾी महिरबानी। ऐं ॻोठ रोहल खान बुगटी खां एहसान अली बुगटी, मोहम्मद खान कुंभार, वफ़ा जमाल कुंभार, उमेद अली कुंभार, हालेपुर स्टॉप मीरपुर ख़ास खां भाइरनि जी वॾी महिरबानी। ऐं ईदगाह जतोई बखर खां मोहम्मद हफ़ीज़ रहमान, ऐं हबीब मलक, ख़लील मलक, अली रहमान मुल्तान खां गुल यासमीन नाज़, ऐं वॾी महिरबानी। ऐं दोस्त हिन ॻोठ पाबो वेरो थरपारकर खां दिलीप कुमार मेंघवाड़, नवल राय, ऐं सूरज गुल, दानिश कुमार भाइरनि जी शंकर लालबुन सां गॾु आहे, भाइरनि जी वॾी महिरबानी, लख कुर्ब। ऐं साईं जा ॻोठ मोल ॾिने माशी खां लॻे वॾनि वारनि खां ज़मीर सेन सोलंगी, मुख़्तियार अली ऐं ज़हीर अब्बास सोलंगी, ॻोठ कंगन खां गुलाब खान कुंभर, शोएब अली ऐं गुलाम रसूल कुंभर, ॻोठ अहमद खान लाशारी खां नियाज़ अली लाशारी, नंढड़ो शाहज़ेब लाशारी, ॻोठ हसू जतोइन खां मोहम्मद मूसा जतोई, यार मोहम्मद ऐं नसरुल्ला जतोई, ॻोठ मोहम्मद कासिम चांडियो खां अली अकबर चांडियो, मोहसिन अहसन फहद अहद शादाब चांडियो, ऐं ॻोठ छुटो मक्सी लॻे कंगन खां सिकंदर अली मक्सी, अकबर खान मक्सी, नारा स्टॉप सखर लॻे सब्ज़ी मंडी खां एजाज़ अली जुणे जो, मुनीब रहमान ऐं मुजीब रहमान जुणे जो, यारमंद कलोड़ा कॉलोनी खां इरशाद अली महेसर, हरसा जी गढ़ी ॻोठ कोरकाणन खां सूमर फ़क़ीर कोरकाणी। दोस्तनि जी वॾी महिरबानी। हीउ आख़िरी नगमो पाकिस्तान नगमो दोस्तनि जे नाम।

जीअं सभिनी वतन पाकिस्तान सां मोहबत ईमान जो हिसो आहे। हर इंसान खे पंहिंजे वतन सां मोहबत हूंदी आहे ऐं उहो फितरी अमल आहे। इंसान जंहिं मिटीअ ते जनम वठे थो, उहा मिटी उन जी माउ जो रुतबो रखे थी ऐं हर नेक ऐं साले ॿार पंहिंजे माउ सां लाज़वाल मोहबत कंदो आहे। असां जॾहिं पंहिंजे वतन जूं ॻाल्हियूं कंदा आहियूं, तॾहिं वतन जी मिटीअ जी ख़ुशबू असांजे मन खे मोतर करे छॾींदी आहे। छो त ज़िंदगीअ जो नाम, ज़िंदगीअ जो रुतबो, मान ऐं शान वतन जी धरतीअ सां ई हूंदो आहे। ऐं साईं जा त चवंदा आहिनि त हाइफ तनी खे होए वतन जन वसारियो, सो वतन तमामु घणो प्यारो हूंदो आहे। असांखे बि पंहिंजो प्यारो वतन पाकिस्तान तमामु प्यारो आहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। समिन ऐं असांजो वक़्तु पंहिंजे पुॼणी ते पहुचे पियो, असांखे हिन वक़्तु पंहिंजो इजाज़त वठणु कोन पियो ॾे। ऐं समिन आख़िर में अव्हां सां ॻाल्हि इहा ज़रूरु कंदासीं त असांजो ही अॼु सुबुह जो प्रोग्राम आख़िरी हुयो। वरी असां ईंदड़ हफ़्ते इनशाला तव्हां सां राति जो 8 बजे खां पंहिंजो मुलाक़ात तव्हां सां ज़रूरु थींदी हिन प्रोग्राम में। ऐं प्रोग्राम जो नालो ऐं प्रोग्राम जे नए टाइम सां ज़रूरु असां गॾु हूंदासीं। तेसिताईं पंहिंजे मेज़बान नेमत अलाह जूणे जो खे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगाह।

अवनय हुरमत ऐं बरपास से ईरान सां चक्रवाज जंगबंदी बरकरार आहे। ईरान सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि, वाइदो कंहिं बि ॾींहुं थी सघे थो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त अमरीका जा टे जंगी बेड़ा कामयाबी सां अवनय हुरमत पार करे विया। अमरीकी जहाज़नि ते हमला पिण कया विया, पर उन्हनि खे को बि नुक़सान न पए थो। हमले आवर ईरानी नंढनि बेड़नि खे तबाह कयो वियो। ईरान नॉर्मल मुल्क न आहे। ईरान जी क़यादत जुनूनी जे जिन खे एटमी हथियार इस्तेमाल करण जो मौको मिले हा त हमले में देर न कनि हा। ट्रंप जो हिकु भेरो ॿीहर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐं फील्ड मार्शल आसिम उल्लाह जी वाह खां सदर ट्रंप चयो आहे त पाकिस्तानी क़यादत जे चवण ते अमरीका प्रोजेक्ट फ्रीडम ते अमलदार मंत्रो कयो।

0: भारत बाक्सर में दहशतगर्द लाइ दहशतगर्द तंज़ीमुन खे फंडिंग करे रहियो आहे। भारत सां मौजूदा शिकार कंहिं बि वक़्तु वधीक तकरार जो सबब बणजी सघे थी। ॿिन्ही मुल्कनि खे अमुन ख़ातिर ॻाल्हियूं करणु घुर्जनि। पार्टी चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी जो फ्रांसी टीवी खे इंटरव्यू। बिलाल भुट्टो ज़रदारी चयो त अब्राहिम हुर्मुज वारे मसइले जो को बि फ़ौजी हल न आहे। ईरान अमरीका जंग ॿीहर शुरू थी त हुन जा असर महदूद न हूंदा। समूरी दुनिया खे हिन तकरार जा नतीजा भोगणा पवंदा।
1: वो जो हम आपको हमेशा से कहते थे किसी का बाप भी पाकिस्तान पे आंच नहीं ला सकता, जो कायदे आजम ने फरमाया था नथिंग कैन अनडू पाकिस्तान। दिस इज द स्ट्रैट कॉन्सिक्वेंसेस विच वी ईच एंड एवरीवन नो इनसाइड एंड आउटसाइड। तो जिसको कोई प्रॉब्लम है, कोई शक है, उसकी एक किस्त दिखाई है हमने। वी हैव री एस्टेब्लिश ये ठोक के बाद हमने दोबारा डिटरेंस री एस्टेब्लिश की मिनटों में की। वो जो सवालात हमने साल पहले किए थे वो आज उसी तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, हिंदुस्तान के बच्चों के सामने, हिंदुस्तान के अवाम के सामने खड़े हैं। तो कौन लोग थे जिन्होंने नहीं कराया?
0: अल्लाह जे फजल सा कवारी जंग में पान का वे दुश्मन के हर महाज से बरतनाक शिकस्त डी। पाकिस्तान की सलामती ए खुद मुख्तियारी जो हर कीमत से दिफा किया वो। DGSPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी है पाकिस्तान ए फील्ड मार्शल डी रात भारत के ख्वाब में इंदा है। बालियारन कश्मीर भारत जो हिस्सो न पर आलमी सतह से मंझल तकरारी इलाको है। पाकिस्तान में थन्द दहशतगर्दी में भारत मुलवस है। पाक फौज पहरी भी तैयार हुई, हाने भी तैयार है। ये सिंदूर का बाहर छो ना निकर, सिंदूर तो औरतों के लगे वो है। कें आजमायणो है तैयार आयो, कंजो पी भी पाकिस्तान जो कुछ बिगाड़े न तो सके। DGSPR पारा 14 अगस्त से फौज परेड जो ऐलान। तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी है 14 अगस्त से ताकत जो नंडो हिस्सो आवाम की ॾेखारे वेंदो। असां रियासत पाकिस्तान जे हथियारबंद फौज आहियूं, कंहिं बि सियासी सोच जी नुमाइंदगी नथा कयूं। DGSPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी चयो आहे त पाक फौज इलीट जी न पर गरीब जी फौज आहे। सिंतास मुआदे जी कंहिंखे बि भंकड़ी करण न ॾींदासीं। छह दरियानि ते सिर्फ़ पाकिस्तान जो हक़ आहे।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: It's 11:15 AM. This time check is brought to you by
3: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
4: मातली के

पंजाबी ठा साईं प्रोग्राम म्यूज़िक वसी हर जुमे जी 11 वगे खां वठी 1 वगे ताईं जी एफ एम नेटवर्क ते ऑन एयर कयो वेंदो आहे। जीअं असां सां हूंदा आहिनि लाड़काणे जा प्यारा प्यारा माण्हू, सखर जा प्यारा प्यारा माण्हू, मेरापुर जा प्यारा प्यारा माण्हू, मोरे जा प्यारा प्यारा माण्हू, सकरनि जा प्यारा प्यारा माण्हू, मटियारीअ जा प्यारा प्यारा माण्हू, मेहराब मीरपुर खास जा प्यारा प्यारा माण्हू ऐं मातलीअ जा मिठा। ऐं हिन प्रोग्राम में हुजे मिठी मिठियूं ॻाल्हियूं अवां सां खोड़ सारियूं, कचहरियूं, मोहबत भरियूं, प्यार भरियूं ऐं हुनखां अलावा तव्हां जा प्यारा प्यारा हथनि सां लिखियल भला भला सुहिणा सुहिणा मैसेजिस ऐं तव्हां जी पसंदि जी चूंड मौसीकी।

समुझा बीठा साईं, समाज में सुधारो कि आणजे, कुछ तजवीजू तहां शेयर कंदासीं। समाज में सुधारो आणण जे लाइ हिकु फर्द खे पंहिंजी ज़िमेवारी समझणी पवंदी, छो त सुठो समाज सुठनि माण्हुनि सां ई ठहंदो अथव। जंहिं जूं कुझु अहम नुक़्ता आहिनि जेके मुंहिंजे नज़रिए मुताबिक़ आहिनि। वधीक हर माण्हूअ जो हिकिड़ो पंहिंजो पंहिंजो अलॻि अलॻि नज़रियो हूंदो आहे, त सभ खां पहिरियां त आहे त तालीमी शऊर पैदा कजे ऐं पढ़ियल लिखियल माण्हुनि जी तादादु उहा तमामु घणी कराइजे, ऐं हक़ ऐं जेके फर्ज़ सुञाणनि था न माण्हू, उन्हनि जी तरबियत कजे ऐं उन्हनि खे अॻिते आणिजे। ऐं उन करे ॿारनि जेके आहिनि, असांजी जेका यंग जनरेशन आहे, जेका असांजा मुस्तक़बिल जा मेमार आहिनि, ऐं जेके असांजे मुल्क जूं वागुजनि जे हथनि में हूंदियूं, असांजी वागुजनि जे हथनि में हूंदियूं, त उन्हनि ॿारनि खे तालीम ज़रूरु ॾिजे। ॿियो आहे माण्हुनि सां इज़त मोहबत ऐं बर्दाश्त सां पेश अचिजे। सुठो इख़लाक समाज खे पुरमन बणाईंदो अथव। ग़रीब ऐं अमीर नंढे ऐं वॾे सां हिकु जहिड़ो वर्ताव थियणु घुर्जे। इंसाफ़ सां समाज मज़बूत थींदो आहे। कानून जी पासदारीअ सां बदअमनी, करप्शन ऐं ॾोहनि में घटिताई ईंदी आहे। हुन जे लाइ कानून जी पासदारी बि ज़रूरी आहे। औरतुनि खे तालीम, इज़त ऐं बराबरीअ जा हक़ ॾियणु घुर्जनि। ऐं नौजवान क़ौम जो मुस्तक़बिल आहिनि, उन्हनि खे मुस्बत सरगर्मियुनि, इल्म ऐं सुठनि क़दरनि खां आणणु ज़रूरी आहे। साफ़ सुथरो माहौल सिहतमंद समाज जी निशानी आहे। वण पोखण ऐं गंदगीअ खां बचणु ज़रूरी आहे। सुखे वक़्त सां गॾु, ॾाढी अहम पॉइंट अथव, सुखे वक़्त सां गॾु ॾुखे वक़्त में बि माण्हुनि जो साथ ॾियणु घुर्जे, छो त गॾियल सहकार सां ई समाज मज़बूत थिए थो। इहो ई चई सघंदो आख़िर में त समाज में सुधारो कंहिं हिकु माण्हूअ सां न, पर सभिनी जो ई गॾियल कोशिश सां ईंदो आहे। जेकॾहिं हर माण्हू पंहिंजे किरदार खे बहितर बणाए त समाज पाण मुरादो सुधरी सघे थो।

तर प्रोग्राम जे आगाज़ में आबदा प्रवीण हिकिड़ो ख़ूबसूरत ट्रेक आहे मुंहिंजे प्लेलिस्ट में, ऐं उन सां गॾोगॾु तव्हांखे मां ॿुधाईंदो न तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थी सघो था बज़रिए एसएमएस ऐं एसएमएस करण जो तरीक़ेकार ॾाढो सवलो आहे। असां पंहिंजे मोबाइल फोन जे राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो, एमआरओ लिखो स्पेस ॾियो, स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो, ऐं लिखी करे मोकिलियो असां 888 1 ते।

अहमद मुगलजी खूबसूरत आवाज ऐं तव्हांजूं सुंदर समातूं मां रुगो तोॾे ॾिसां, तूं रुगो मूं ॾे ॾिसीं। दिलि चवे थी ओ पिरी तूं मुंहिंजे साम्हूं हुजे। सभु मिट ताईं तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थी सघो था। ज़रिए एस एम एस ऐं एस एम एस करण जो तरीक़ेकार सवलो आहे, आसान आहे। पंहिंजे मोबाइल फोन जे राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो, एम आर ओ लिखो, स्पेस ॾियो, स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ या शहर जो नालो, ऐं लिखी करे मोकिलियो असां नहां 888-1 ते। त मुंहिंजा मिठा साईं, किस्मत इंसान जी ज़िंदगी जो हिकु अहम तसवुरु हूंदो अथव, जंहिंखे तकदीर बि चयो वेंदो आहे। उन खां अलावा इन जा खोड़ ॿिया बि नाला अथव, जीअं चऊं त नसीब या भाग। हर इंसान जी दिलि में उहो सवाल ज़रूर हूंदो आहे त ज़िंदगी में जेके वाकिया थियनि था न, उहे अॻुवाट लिखियल आहिनि या इंसान पाण पंहिंजी क़िस्मत सां पंहिंजी क़िस्मत बदिलाए सघे थो। क़िस्मत बाबति मुख़्तलिफ़ माण्हुनि जा मुख़्तलिफ़ ख़्याल आहिनि, पर सच उहो आहे त क़िस्मत ऐं महिनत ॿिन्ही जो पाण में गहरो लाॻापो अथव। कुझु माण्हू समझंदा आहिनि त हर शइ क़िस्मत में अॻुवाट लिखियलु आहे, तंहिं करे इंसान खे घणी महिनत करण जी कहिड़ी ज़रूरत आहे। अहिड़ी सोच इंसान खे सुस्त बि करे छॾींदी अथव। जेकॾहिं को शागिर्द पढ़ाई नथो करे, चवे थो त जेकॾहिं क़िस्मत में हूंदो त पास थी वेंदुसि, त इहा ज़ाहिर इहा ग़लति सोच आहे न। ऐं क़िस्मत ते भरोसो करणु सुठो अमल आहे, पर बग़ैर महिनत जे कामयाबी हासिल करणु सफ़ा नामुमकिन अथव। ॿिए तरफ़ वरी कुझु माण्हू पंहिंजी महिनत ते मुकमल भरोसो कनि था ऐं क़िस्मत खे नज़रअंदाज़ कनि था, पर हक़ीक़त में इंसान जी महिनत सां गॾु क़िस्मत जो बि किरदारु ज़रूरु हूंदो आहे। पर कॾहिं कॾहिं इंसान तमामु घणी महिनत करे थो, पर नतीजो संदसि मर्ज़ीअ मुताबिक़ नथो मिले। उन मां ज़ाहिर थिए थो त क़िस्मत बि पंहिंजो असर ॾेखारे रही आहे। असल में कामयाबी जे लाइ महिनत, लगन ऐं दुआ सां गॾु क़िस्मत ते बि ईमान रखणु ज़रूरी आहे। जीअं चयो वेंदो आहे त महिनत कंदड़ जी मदद क़िस्मत बि करे थी। यानी जेको इंसान सचाई ऐं ईमानदारी सां महिनत करे वियो न, उन लाइ क़िस्मत जा दरवाज़ा बि खुली वञनि था। त हुन जे करे असांखे घुर्जे त क़िस्मत खे इल्ज़ाम ॾियण बदिरां पंहिंजे कम ते ध्यानु ॾियूं। नाकामीअ खे क़िस्मत जो ॾोह ॾियण आसान आहे, पर पंहिंजी ग़लतीअ खे समझण ऐं उन खे दुरुस्त करण वॾी अहमियत जी ॻाल्हि आहे। हिकु मज़बूत इरादो ऐं मुसलसल महिनत इंसान खे संदसि मंज़िल ताईं पहुचाए सघे थी।

असांजे प्रोग्राम में हिन वक़्तु असां सां गॾु आहे महबूब अली मल्ला, अब्दुल कदीर मल्ला ऐं अब्दुल समद मल्ला। आज़म सिटी सकरन खां पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधनि पिया ऐं नूर जहां जे कलाम जी अता जन फरमाइश कई आहे त हाज़िर मुंहिंजा भाउ, तव्हांखे तव्हांजे पसंदि जो सॉन्ग असां ज़रूरु ॿुधाईंदासीं, कोशिश कंदासीं, छो जो पसंदि हर कंहिंजी पंहिंजी पंहिंजी हूंदी आहे ऐं मुख़्तलिफ़ माण्हू पंहिंजी पंहिंजी पसंदि मोकिलींदा आहिनि। असां कोशिशि कंदा आहियूं त सभिनी जी जेके बि असांखे प्यारा मैसेज कनि था उन्हनि जी असां पसंदि जा सॉन्ग हलायूं, पर कॾहिं कॾहिं ईअं बि थी वेंदो अथव त टाइम असां वटि थोरो हूंदो आहे ऐं माण्हुनि जी चॉइस वधीक हूंदी आहे, उन्हनि जे पसंदीदा गाननि जी तादाद वधीक हूंदी आहे, पोइ उन जे करे उहे रहिजी वेंदा आहिनि। मैडम नूरजहां पाकिस्तान जी तमामु वॾी गायणी आहे, इनशाला ताला उन जो सॉन्ग असां पंहिंजे प्रोग्राम में ज़रूरु शामिल कंदासीं। ऐं अदो आहे, चवे थो, अदा वॾी महिरबानी मास्टर मंज़ूर जो कलाम ॿुधाइण ते, त मुंहिंजा मिठा महिरबानी अदा, नालो तव्हां पंहिंजो कोन लिखियो आहे, बरहाल तमामु घणी महिरबानी तव्हांजी, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया आहियो। दादू खां इमदाद जतोई अब्दुल ख़ालिक जतोई पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो, मुबशर हुसैन जतोई हुन सां गॾु आहे ऐं किफ़ायत उल्ला जतोई, फारूक हैदर जतोई ऐं जलाल चांडी जे कलाम जी फरमाइश कई अथनि, त जलाल चांडी जी ही कलाम जी ईअं सम्झो त ॿी फरमाइश आहे त भाउ मुंहिंजा ज़रूरु जलाल चांडीअ खे बि असां पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल कंदासीं। ऐं ग़ुलाम फारूक, शकील, ख़लील, सबीन, अकील, अतीक, मुकीम, सुलेमान, गोठ, मेहर, हाजी, राजपुर खां पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधी रहिया आहिनि। अदा साईं महिरबानी तव्हांजूं, स्पेशली मां ग़ुलाम फारूक समेत जेके बि माण्हू आहिनि, जेके तव्हां मैसेज में जंझनि जा नाला लिखिया आहिनि, उन्हनि सभिनी खे मां पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार चवां थो। दादू खां इमदाद जतोई भाजन जो ही ॿियो मैसेज, जिन सां गॾु अब्दुल ख़ालिक जतोई, मुबशर हुसैन जतोई, किफ़ायत उल्ला जतोई आहे ऐं फारूक हैदर जतोई आहे, त मुंहिंजा मिठा तव्हांजी तमामु घणी महिरबानी, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया आहियो, मुंहिंजी तरफ़ खां खोड़ दफ़ा तव्हांखे भलीकार।

0: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
1: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: छा अहां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो? हाने वक्त आहे चमकण जो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल, जेका दे कुदरती निखार, साफ नरम आई रोशन चेहरो। पहरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पहजो चेहरो, जीए हुजे हीरो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, चेहरे जी असल चमक जो राज।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
5: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
1: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
6: सुनते रहो GFM 90.4।

शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी मुंहिंजनि मिठनि प्यारनि भाउरनि भेनरुनि खे प्रोग्राम म्यूज़िक मस्तीअ जे आख़िरी लम्हनि में बि भली कार असां चऊं था त मुंहिंजा मिठा साईं प्रोग्राम म्यूज़िक मस्ती हर जुमे जे ॾींहुं 11 वॻे खां वठी 1 वॻे ताईं ऑनियर कयो वेंदो आहे ऐं हिन प्रोग्राम म्यूज़िक मस्तीअ में तव्हां सां हूंदियूं आहिनि मिठियूं मिठियूं ॻाल्हियूं ऐं तव्हां पारां मोकिलियल प्यारा प्यारा मैसेजिस।

तबन वेठा सही प्रोग्राम में दोस्तों जहाँ मैसेजेस भी शामिल कंदा हलूँ गड गड इन असाजे प्रोग्राम में वक्त गड है कुर्बान अली डेपर मोहम्मद आचर डेपर सावण खान हाली पोट्रो डेडिकेट कदा अब्दुल जबार चन्ना के चवंदा सोढ़ल फकीर के आवाज में असा कलाम उतरा तो हाजिर मुझा मिठा सही सोढ़ल फकीर जो ताल्लुक मोरो शहर से रो है मोरो के बराड़ी से रो है सिंध जो तमाम वो फनकार है ऐं रहियो आहे अलाह ताला हुनखे जन्नत में जॻह ॾिए ऐं ज़रूरु अदा अगरि टाइम बचियो त तव्हांखे सोढ़ल फ़क़ीर जी आवाज़ में ज़रूरु कलाम ॿुधाईंदासीं अगरि न त नेक्स्ट प्रोग्राम जेको हूंदो न उन में तव्हांखे ज़रूरु सोढ़ल फ़क़ीर जी आवाज़ में कलाम ॿुधाईंदासीं त असां सां गॾु आहे दादूअ खां इमदाद जतोई अब्दुल ख़ालिक जतोई मुबशर हुसैन जतोई ऐं किफ़ायतुल्ला जतोई पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधी रहियो आहे त उन्हनि खे बि असां पंहिंजे प्रोग्राम में स्पेशली भलीकार चऊं था ऐं उन खां अलावा ग़ुलाम फारूक शकील ख़लीक ऐं असां सां गॾु आहे अकील मुकीम सुलेमान गोठ मेहर हाजी राजपुर खां त महिरबानी प्यारा तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया आहियो लख कुर्ब लख एहसान तव्हांजा।

मारवी सिंधु जी खूबसूरत आवाज है तवाजो सुंदर सा मातू तो मुझा मिठा तीन प्रोग्राम जो वक्त भी पानी पुजाणी से पहुंचने वो है प्रोग्राम जे पुजाणी से हमेशा वागू तक चाहता हूं तो पानों घटे का घड़ो ख्याल रखो अलावा पाँच पाड़ेवार ख्याल रखना कर दोस्तों मिट माइट ख्याल रखना कर मुझा मिठा साई हमेशा बेन की तकलीफ के पांजी तकलीफ समझो पांजे बस वित आहार जे मानू आन अस मुआशरे में जे महसूस कर सख्त जरूरत मंद मानू आन उन्हें पांजे बस वित आहार मदद जरूर कदा कर इंशाल्लाह ताला हयाती रही तो वरी बे प्रोग्राम में तवा सा गड़ हुंदासीं तेसि ताईं जे लाइ ॾींदा पंहिंजे मेज़बान गुलाब खान भेण खे इजाज़त अलाए वाही।

0: हक जी जंग में कौम मुतहद फौज सां कुल्हो कुल्हे में मिलाए बीठल रही। पाकिस्तान राफेल जहाज किराए भारत जो गुरूर मिट्टी में मिलायो। सुषमा वारे वफाकी वजीर अता तारर चयो आहे त पाकिस्तान जे भरपूर जवाब बाद भारत 4 कलाकनि में शिकस्त तस्लीम कई। सॼी दुनिया पाकिस्तान जी कामयाबी ऐं भारत जी शिकस्त जी शाहिदी ॾेई रही आहे। टनो बम थान में औरत बिन मासूम बादल समेत फुलेली किनाल में ठपो रियाब खाद करे छॾियो। औरत ऐं ॿारनि जा लाश हथे सुञाणप नथी सघी। पुलिस मूजिबि औरत खे शहरनि किनाल में टपो ॾींदे ॾिठो हो। औरत ऐं ॿारनि जी सुञाणप नाहे थी सघी। वाकिए जी जाच जारी आहे। नौशहरो फिरोज़ीदार।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वयो
2: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
3: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हईअ में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347321230 कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
5: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
4: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
5: 03125257 86
4: जी हा 2315525786
5: GAFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़
6: जुमत उल मुबारक जे बाबरकत ॾींहं जी ख़ुसूसी नशरियात GAFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज़ मां पेश कई पई वञे।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GAFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

जुमत उल मुबारक जे बाबरकत डी जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: मेरा फैन। White H Beauty Cream 5-Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय।
2: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नस्लन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हईअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत ॾींहं जी ख़ुसूसी नशरियात GA FM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वञे।
7: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
5: त पोइ GA FM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
7: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GA FM मातली बदीन।
7: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
7: 03125252786।
5: जी हा, 2315-2575-786।
7: GA FM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जने पढ़ू था दरूद, सजन से पान दरूद बुधन था। यानी जब भी हम सरकार पे दरूद भेजते हैं, वो हमारा दरूद समाप्त फरमाते हैं। ये हमारा अकीदा है। ऊंचा बोले सुभान अल्लाह। समाप्त फरमाते

आपको देखता हूँ माशाल्लाह, आपको देखता हूँ दिल खुश होता है, पीछे देखता हूँ फिर बड़ा नर्वस हो जाता हूँ। अब आपसे गुजारिश है जो खामोश बैठा हो उससे पूछ लें कि मौला अली का नारा लग रहा है तेनू खैर से है, क्यों खामोश बैठा है? थोड़ा जा ऊंचा बोल दे सुभान अल्लाह। हाँ माशाल्लाह, सलामत रहें मिलकर।

नारा लगाएं, इलाके वालों को पता चल जाए, उनको भी पता चल जाए इस पिंडाल में मौला अली के आशिक बैठे हैं। बाबा से बुलंद मैंने वापस सिंध जाना है, आपकी आवाज सिंध तक मेरे कानों में गूंजती रहे। बाबा से बुलंद।

आशिक बैठे हैं फिर अभी उतनी आवाज नहीं आई। महफिल वाला पता नहीं कहाँ बैठा है, मैं नहीं जानता किधर है, सारे ही महफिल वाले। हाँ, ये जितने स्टेज पे बैठे हैं इनको इतनी आवाज सुनाएं, इतनी आवाज आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी जितनी ये आशिक अब निकालेंगे। समा फरमाएं बावाज़े बुलंद, जितनी अल्लाह ने जान में ताकत दी है उतनी जान के साथ मौलाली के नारे का जवाब देना है। बावाज़े बुलंद, हैदर बरगा सकीन कोई।

0: बस खत्म। जो बाहर खड़े हैं वो भी बोल दे
1: वो नारे हैदरी।
2: सिंध के माथे का झूमर
3: GFM 88 नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
4: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो
2: सिंध के माथे का झूमर
3: DFM 88 नेटवर्क
4: सिंध की आवाज
5: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
6: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने

0: आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़.

0: हक जी जंग में कौम मुतहद फौज से कुल्हो कुल्हे में मिलाए बीठल रही। पाकिस्तान राफेल जहाज के राय भारत जो गुरूर मिट्टी में मिलाया। सुषमा वाले वफाक वजीर अता तारा चाहे है तो पाकिस्तान के भरपूर जवाब बाद भारत चैन कलाक में शिकस्त तस्लीम कई। सजी दुनिया पाकिस्तान की कामयाबी भारत की शिकस्त की शाहिदी दई रही है।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय।
5: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जी तरफा पेश कयो वयो।
6: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
7: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
7: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
8: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत ॾींहं जी ख़ुसूसी नशरियात GAFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज़ मां पेश कई पई वञे।

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत डी जी खुसूसी नशरियात GAFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वञे।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by
1: Hemay Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे 4 गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी. Hemay Diamond Glow Bleach Cream.
0: हर दिन हर पहर, जिंदगी की लहर. GFM 88 Network, सिंध की आवाज.
2: खूबसूरती है जो असल राज. सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार. सिर्फ बिन दीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन जोशो. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो.
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल.
3: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद.
4: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी.
3: औलाद जो न थियण और तुंजे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे.
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली. वधिक मालूमात लाए 2347-3241-230.
5: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़श ख़बरी. छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो. सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो. मोबाइल नंबर 03002962435. एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली.
3: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिन जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने.

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: रखे हो तो आवाज भी सिंकी है। GFM 88 नेटवर्क सिंकी आवाज।
1: जडे माँ पांजो ख्याल रखंदी आहे तो सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वयो।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान खे समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय।
1: जडे माँ पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वयो।
4: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत ॾींहं जी ख़ुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज़ मां पेश कई पई वञे।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

गड़ियल कौमनि में ईरान मुखालिफ़ अमेरिकी ठहराउ रद्द रूस पारां ठहराउ खे खिते में छिकताण वधाइण जी कोशिश करार ॾिनो वियो। गड़ियल कौमनि में रूस जे मुस्तक़िल नुमाइंदे वेस्ले जो चवणु आहे त ईरान ख़िलाफ़ हिकु तरफ़ो बयानी उठाइण वारी हर कोशिश खे रद्द कयूं था, अहिड़े ठहराउ जी हिमायत न कंदासीं जेको खिते में जारी बुहरान जे असल सबबनि खे नज़रअंदाज़ करे। विचोभर में बहरी सलामती हिकु तरफ़नि क़दमनि सां मुमकिन नाहे। तकरार जो ख़ात्मो ऐं फ़ौजी कार्रवायूं रोकणु ज़रूरी आहिनि। छिकताण वधाइण वारनि क़दमनि खां पासो कयो वञे। हक़ जी जंग में क़ौम मुतहद फ़ौज सां कुल्हो कुल्हे में मिलाए बीठल रही। पाकिस्तान राफ़ेल जहाज़ खे राय भारत जो गुरू मिटीअ में मिलायो। सुसमा वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अता तारड़ चयो आहे त पाकिस्तान जे भरपूर जवाब बाद भारत चइनि कलाकनि में शिकस्त तस्लीम कई। सॼी दुनिया पाकिस्तान जी कामयाबी ऐं भारत जी शिकस्त जी शाहिदी ॾेई रही आहे। टनो मोहम्मद खान में औरत बिन मासूम ॿारनि समेत फुलेली कैनाल में टपो ॾेई आबघात करे छॾियो। औरत ऐं ॿारनि जा लाश हथ। पुलिस मूजिबि आबघात कंदड़ औरत जी सुञाणप श्रीमती रतना बाई निंगरी आशा ऐं निंगर संजय जे नालनि सां थी आहे। आबघात कंदड़ औरत ऐं ॿार यूसी लाखाट जे कोली ॻोठ जा रहवासी आहिनि।

0: हक वारी जंग में कामयाबी के साल मुकमल थियण ते मुख़्तलिफ़ शहरनि में ॿिए ॾींहं बि रैली हैदराबाद में शहरी इंतज़ामिया पारां रैली कढी वई। खैरपुर में सेप्को मुलाज़मनि पारां बाबरा ऑफिस खां प्रेस क्लब ताईं रैली कढी वई। कंदकोट में डीसी ऑफिस खां घंटाघर ताईं रैली, शहरनि जी शिरकत। सखर में बि रैली कढी वई। उस्तादनि, शागिर्दनि ऐं शहरनि जी शिरकत। नवदेरो में स्कूल जे उस्तादनि ऐं शागिर्दनि पारां रैली। खडड़ो में प्राइमरी स्कूल जे उस्तादनि ऐं शागिर्दनि पारां रैली कढी वई। मिठी वेझो ॻोठ गोधियार में सूमरा धुरन में झेड़ो। फायरिंग में ॿिनि औरतुनि ऐं टिन ॿारनि समेत 12 ॼणा ज़ख़्मी। वारसन जो सिविल अस्पताल मिठी जे एमरजेंसी गेट अॻियां धरणो। मुतासिर धुर जो एमएलए महेश कुमार बलाणी जे पीए सिराज सूमरो ते हमिलो कराइण जो इल्ज़ाम। FIR दाख़िल करे जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे इंसाफ़ ऐं तहफ़ फराहम करण जो मुतालबो। नवाबशाह में मोहसिनाबाद वासी निंगरी ऐं संदस भाउ मुबैना तौर अगवा। वारसन जो एहतजाज। वारसन मुजिब हथियारबंद निंगरी ज़रीना ऐं संदस 5 सालनि जे भाउ इरफान सोलंकीअ खे अगवा करे विया आहिनि। NC दाख़िल कराइण बावजूद पुलिस धीउ ऐं पुट खे बाज़ियाब कराइण जे लाइ मदद न करे रही आहे। ॿिन्ही ॼणनि खे बाज़ियाब करायो वञे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
4: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो।
7: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि, हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
8: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो ग़ुलाम अली रोड मातली।
9: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो,
8: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
9: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
8: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन।
9: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
8: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
9: 03125257866।
8: जी हा, 2315525786।
9: जीएफएम रेडियो नेटवर्क,
8: सिंध जो आवाज़।

0: 3:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
4: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: FM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: निखार, साफ नरम आई रोशन चेहरो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिससे मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण और तुंजे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाय 2347-3141-230।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: अपना शहर, अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

ईरान यूएई के पारसी मुल्क तौर न पर दुश्मन ताकत तौर ऐसे तो यूएई ईरान खिलाफ जंग में दुश्मन के तेहरान बाबत अहम जान दिनी है। ईरानी पार्लियामेंट के मेंबर अली खिजरियान है तो यूएई के जंगी जहाजन भी सीधे रीत ईरान से हमला कया हाँ सिक्योरिटी हिकमत अमली में यूएई के भी शामिल किया है। जड़ी तरह अरबेल में दुश्मन के ठाकन के निशानों बनाया पे वे अड़ी तरह यूएई में मौजूद अदन के निशानों बनाया वो वे वजीर मुराद अली शाह की सदारत हेठ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बाबत इजलास बुनियादी ढांचे तालीम ट्रांसपोर्ट ए सनती तरक्की मनसूबन की मंजूरी दिनी वही। सिंध में गाड़ियों की फिटनेस बाबत इंस्पेक्शन सेंटर कायम करने जो फैसलो मुराद अली शाह चाहे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तहत अहम मनसूबन जो कम जारी है नव मनसूबन से भी कम जल्द शुरू थो जैसा सूबे के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बेहतरी इंदी। हक की जंग में कौम मुतहद फौज से कुल्हो कुल्हे में मिलाए बीठल रही पाकिस्तान राफेल जहाज के राय भारत जो गुरूर मिट्टी में मिलाया। सुथमा वाले वफाकी वजीर अता तारर चाहे पाकिस्तान के भरपूर जवाब बाद भारत चैन कलाक में शिकस्त तस्लीम कई सजी दुनिया पाकिस्तान की कामयाबी ए भारत की शिकस्त की शायदी दई रही है। कनबोध खान में औरत भी मासूम बारन समेत फुलेली किनाल में टपो दई आपघात कर छो औरत बारन जा लाश थे पुलिस मुजिब आपघात कदड़ औरत की सुणप श्रीमती रतना बाई निंगरी आशा ए निंगर संजय के नाल से थी है। आपघात कदड़ औरत बार जूसी लाखाट जी जे कोली गोठ जा रहवासी है। कंदकोट के घोड़ाघट थाने के हद में कारा इल्जाम हेठ डेरन हथा भाजाई कतल डेरन में समात कुंदल की गोलियों हणी कारा इल्जाम हेठ कतल कर पुलिस वाकिबात जवाबदार फरार थी वह मकतूल औरत जो लाश ना मिलो जांच जारी है। झोल वेझो कारा इल्जाम हेठ कतल कल 14 साल की निंगरी फरीदा के शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट पधरी निंगरी के सिरोटा हणन बाद घुटा दई मारण की तस्दीक पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुजिब लाश 6 पुरानो है। पुलिस वाके जो सरकारी फरियाद से मकतूल नारे के पीउ सिकंदर लिगा के मथा केस दाखिल कर वरतो केसन में कतल वो कलम शामिल न कर वो पुलिस नामजद जवाबदार सिकंदर लिगारी के गिरफ्तार करण में भी नाकाम। चंदो अलहार वेझो कबूतरबाजी लाशारी बिरादरी की बिंदुन में छेड़ो नौजवान कतुल 6 जख्मी बिन की हालत गणती जोगी गोठ वेड़ो खान लाशारी में कबूतरबाजी छेड़ो थो गोलियों लगन सबब नौजवान अहसान कतुल बिन जन की गणती वाली हालत में हैदराबाद मुंतकिल कर वो धुरन में छिकताण वही वही।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: आप सुन रहे हैं जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: क्या देख रहे हो?
3: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस।
3: इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
4: 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
2: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
3: तो भाई साहब क्या समझे?
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: क्या देख रहे हो?
3: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस।
3: इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
4: 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
2: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
3: तो भाई साहब क्या समझे?
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
7: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जी बेहणी डॉक्टर अतीका सईद
7: रोजानू सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
8: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
8: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
6: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
8: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
6: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
8: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 03132525786।
8: जी हा, 2315525786।
6: GAFM रेडियो नेटवर्क,
8: सिंध जो आवाज़।

0: It's 4:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: Har din har peher. Zindagi ki leher. GFM 88 Network. Sindh ki awaaz.
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोजानो सुबुह जो 10 खा रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
4: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-3141-200
6: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
7: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
8: सुनते रहो GFM 90.4

0: थी हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
6: रोजानू सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
7: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शि ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंकी है। GFM 88 नेटवर्क सिंकी आवाज।
1: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
0: अपना शहर, अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
6: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शि ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।
8: सुनवारा हुस्न पाजो करे जाहिर नहीं दो कर, करे जाहिर नहीं दो कर। लिखण में थे न कोताही, लिखण में थे न कोताही, लिखण में थे न को

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: इट्स 5 पीएम दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
1: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो
2: अब आप सुनेंगे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: ईरान ऐं अमरीका जो हिकु बेहतर जंगबंदीअ जी वजगड़ियुनि जो इल्ज़ाम। अमरीकी फ़ौज कशम ऐं बंदर अब्बास पोर्ट ते हमलनि जी तस्दीक करे छॾी। ईरानी फ़ौज जो बि भरपूर जवाब। अमरीकी बहरी जहाज़नि खे निशानो बणायो। अमरीकी सेंटकॉम पारां जारी कयल बयान में चयो आहे त कशम ऐं बंदर अब्बास पोर्ट ते ॿिनि हंधनि खे निशानो बणायो आहे। हमलनि जो मक़सदु ईरान सां ॿीहर जंग शुरू करणु नाहे। अमरीकी जहाज़नि ते हमलनि बाद ईरान ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई कई आहे। ईरान जे ख़ातम ओलंबिया हेडक्वार्टर्स मूजिब ईरानी फ़ौज अमरीकी हमलनि जो जवाब ॾिनो आहे। अपनाए हुरमुज़ जे ओभर ऐं चाबहार बंदरगाह वेझो अमरीकी फ़ौज ॿेड़नि खे निशानो बणायो वियो, जिन सां खेनि घणो नुक़सान पहुतो आहे।
1: They trifled. They call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast.
2: Could you give us an update on what is the latest in that talk?
1: No, the talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it. I will tell you. They want to sign it. A lot more than I do. I think that's what you want to hear, fellas, right? Or do you want to hear a different tone? That's the only thing they understand. They don't understand it.
0: झड़पनि ऐं हमलनि बावजूद ईरान सां जंगबंदी बरक़रार आहे। तेहरान सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि। वाइदो कंहिं बि वक़्तु थी सघे थो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त अमरीका जा टे जंगी बेड़ा अपनाए हुरमुज़ पार करे विया आहिनि। जहाज़नि ते ईरानी हमलनि खे नाकाम बणायो। ट्रम्प जे हिकु भेरो ॿीहर वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं फील्ड मार्शल आसिफ़ मुनीर जीवा खान। सदर ट्रम्प चयो त पाकिस्तानी क़यादत जे चवण ते अमरीका प्रोजेक्ट फ्रीडम ते अमल दरामद रोकियो।
1: Because the really wonderful leadership at the place, as you know, Pakistan has been fantastic, and their leaders have been fantastic, the Field Marshal and the Prime Minister, and they asked us not to do it. We'll go back to it if we have to. They asked us not to do it during the negotiation.
0: सिफारती हल मेज़ ते ईंदो आहे त अमरीका गैर ज़िमेवारो फ़ौजी एडवेंचर कंदो आहे। जेके बि हुजनि, ईरानी क़ौम कंहिं बि दबाउ तोड़ी धमकियुनि आड़ो न झुकंदी। तेहरान शहरियुनि जे दिफ़ा लाइ हज़ार सैकड़ो तयार आहे। समाजी वेबसाइट एक्स ते जारी कयल बयान में ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास राख़्शी चयो आहे त ईरान जे मिज़ाइल प्रोग्राम बाबति अमरीकी CIA जी रिपोर्ट बि ग़लति आहे। ईरान वटि मिज़ाइल सलाहियत 75% न पर 120% आहे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार जो सिंगापुर जे परडेही वज़ीर व्यून बाला कृष्णन सां राब्तो। अमरीकी हिरासत में मौजूद ईरानी बहरी जहाज़नि जी पाकिस्तानी ऐं ईरानी अमले जी वापसी लाइ सहकार करण जी दरख़्वास्त। इसहाक डार चयो त मामले ते ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास राख़्शी सां बि राब्ते में आहियां। पाकिस्तान ईरान शहरियुनि जी महफ़ूज़ वापसीअ लाइ सहूलियत फराहम करण लाइ तयार आहे। अमरीका पारां ज़ब्त कयल ईरानी ॿेड़नि ते 11 पाकिस्तानी ऐं 20 ईरानी शहरी मौजूद आहिनि।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहां वहां। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
5: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600cc कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखे। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
6: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
5: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
7: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
8: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
9: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
8: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
9: रोजानू सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
8: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
9: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
10: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
11: सुनते रहो GFM 90.4।

0: Kebap Sunengi. Cihe FM.
1: वोरो वो शहरो मीरपुर खास लाड़काना सखर गूंज रही है हर जगह पर सिंध की आवाज जीए एफएम 88 नेटवर्क।
0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: गडल कोमन में ईरान मुखालिफ अमरीकी ठहराव रद्द। रूस पारा ठहराव खिते में छिटाण वधाण की कोशिश करार। गडल कोमन में रूस के मुस्तकिल नुमाइंदे वेसेली नेबेंसिया ईरान खिलाफ एक तरफो बयानियों ठाण वाली हर कोशिश के रद्द कयूं था। अड़े ठहराव की हिमायत न कदी जो खिते में जारी बहरान के असल सबबन के नजरअंदाज करे। विचोभर में बहरी सलामती एक तरफन कदम से मुमकिन ना है। तकरार जो खात्मो ए फौजी कार्रवाई रोकण जरूरी है। छिकताण वधायण वाले कदम का पासो किया वे।

इलाका जो अकबे से जंगबंदी की बचकड़ियों जो इल्जाम अमरीकी फौज कशम ए बदर अब्बास पोर्ट से हमलन की तस्दीक कर छी। ईरानी फौज जो भी भरपूर जवाब अमरीकी बहरी जहाजन के निशानों बढ़ाया। अमरीकी सेंटकॉम पारा जारी कल बयान में कशम ए बदर अब्बास पोर्ट से बिन हंधन के निशानों बढ़ाया है। हमलन जो मकसद ईरान से बीह जंग शुरू कर अमरीकी जहाजन से हमलन बाद ईरान खिलाफ जवाबी कार्रवाई कई है। ईरान के खातम अल अंबिया हेडक्वार्टर्स मूजिब ईरानी फौज अमरीकी हमलन जो जवाब दिनों है। आबदा हुर्मुज़ ओभर ए चाबहार बंदरगाह वेझो अमरीकी फौजी बेड़न के निशानों बढ़ाया वो जिनसा खेन घणो नुकसान पहुंचो है।

0: really wonderful leadership at the place. As you know, Pakistan has been fantastic, and their leaders have been fantastic, the Field Marshal and the Prime Minister. And they asked us not to do it. We'll go back to it if we have to. They asked us not to do it during the negotiation.
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। सचल की सरमस्त धरती
2: फातिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
1: GAFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। हाण नरम चमक ऐ साफ जिल्द रुगो एक क्रीम जी दूरी ते पेश आहे हेमे नेचुरल्स जी डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जिनमें शामिल आहे SPF 30 सिज जी नुकसानकार किरणन का बचा लाए कोजिक एसिड ऐ जिल्द मा दाग धब्बा निशानात खत्म कर लाए विटामिन सी ग्लूटाथायोन ऐ आर्बुटिन जेके डियन तवा जे चेहरे के कुदरती साफ ऐ चमकदार ग्लो रोजानो इस्तेमाल करियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम ऐ हासिल करियो नो ग्लो नो एतमाद हर डी हुजे एक नो ग्लो एक नो कॉन्फिडेंस हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम।
3: अब चमकती नर्म और बेदाग जिल्द एक क्रीम की दूरी पर हेमे नेचुरल्स के पिंक डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम। इसमें शामिल है SPF 30 जो सूरज के नुकसानदेह श्वाओं से तहफ़ दे कोचिक एसिड जो जिल्द से दाग धब्बे खत्म करे और विटामिन सी ग्लूटाथायोन और आर्बुटिन जैसे ब्राइटनिंग एजेंट्स जो आपको दे एक खूबसूरत चमकदार और नेचुरल ग्लो। हेमी नेचुरल्स पिंक ग्लो ब्यूटी क्रीम हर दिन हो एक नया ग्लो एक नया कॉन्फिडेंस पिंक डायमंड ग्लो बाय हेमी नेचुरल्स।

चमकती, नर्म और बेदाग जेल एक क्रीम की दूरी पर। हेमी नेचुरल्स के पिंक डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम, इसमें शामिल है SPF 30 जो सूरज के नुकसान देह श्वाओं से तहफ़ दे, कोचिक एसिड जो जिल्द से दाग धब्बे खत्म करे, और विटामिन सी, ग्लूटाथायोन और आर्बोटिन जैसे वाइटनिंग एजेंट जो आप खुद ही एक खूबसूरत चमकदार और नेचुरल ग्लो। हेमी नेचुरल्स पिंक ग्लो ब्यूटी क्रीम, हर दिन हो एक नया ग्लो, एक नया कॉन्फिडेंस। Pink Diamond Glow by Hemi Naturals.

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम लिसनर्स जी एस अखर एफएम 88 जी लाइव स्टूडियोज का प्रोग्राम सेहत नंबर के रौनक महफिल साण करे आवाजो पैंजो मेज़बान बाबर शेख इन्हीं उम्मीदों से अवां बिल्कुल ठीक ठाक हुंदा अल्लाह पाक अवां सभिनी ते पंहिंजी रहमतुनि जा साया बरकरार रखे अवां जिते हुजो खुश हुजो आबाद हुजो लिसनर्स बिल्कुल रौनक महफिल प्रोग्राम आहे जीए एफएम नेटवर्क आहे इन प्रोग्राम में 8 वगे ताईं अवांजो ऐं असांजो साथ इंशाल्लाह ताला जारी रहणो आहे अॼु जी तारीख़ आहे 8 मई 2026 ऐं जुमे जी शाम आहे 7:12 टाइम थियो आहे यानी प्रोग्राम अव्हां बिल्कुल लाइव ॿुधी रहिया आहियो तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हीउ प्रोग्राम स्पॉन्सर आहे अव्हां ताईं पहुचाइण लाइ तावन कयो आहे हेमे नेचुरल्स वारनि ऐं हेमे नेचुरल्स वारा जेके आहिनि उहे बाक़ायदा तौर ते इन ॻाल्हि खे कन्वे करण लाइ मूंखे चयो अथनि त हिन जी जेका प्रोडक्ट आहे हेमे ब्यूटी क्रीम इन में शामिल आहे SPF 30 कॉजिक एसिड ग्लूटाथायोन वाइटमिन सी आरबूटीन ऐं ॿिया केतिरा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जेके अव्हां जे चेहरे जी स्किन जे लाइ तमामु घणा फ़ाइदेमंद आहिनि बिल्कुल दोस्तो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जेका आहिनि इन्हनि जे लाइ इन्हनि इहा बि ॻाल्हि कई आहे त जेको SPF 30 इहो शामिल आहे हिन में इहो तव्हांखे सन प्रोटेक्शन ॾिए पियो यानी सिज जे नुक़सान खां रेस खां महफ़ूज़ रखे पियो सेकेंडली इन में जेको कॉजिक एसिड शामिल आहे इहो तव्हांजे चेहरे तां दाग धबा निशाना जो ख़ात्मो करे पियो ऐं ग्लूटाथायोन वाइटामिन सी ऐं आरबूटीन जेको इन में शामिल आहे इहो अव्हांजे चेहरे जे स्किन खे तमामु घणो फ़ाइदो ॾिए पियो लिसनर्स विद इन 7 डेज़ तव्हांखे इन जो रिज़ल्ट मिली सघे पियो ऐं इन्हनि इन ॻाल्हि खे ते इंसिस्ट कयो आहे त तव्हां जॾहिं हेमे ब्यूटी क्रीम वठण वञो पिया त हिकु त शहर जी शाही बाज़ार तव्हां वञो उते तव्हांखे आसानी सां सुठी कॉस्मेटिक्स वारी वटि हेमे ब्यूटी क्रीम मिली वेंदी ऐं सेकेंडली तव्हांखे छा करणो आहे कुझु निशानियूं इन्हनि ॿुधायूं आहिनि उहे निशानियूं तव्हांखे ज़हन में रखी पोइ तव्हांखे इहा परचेस करणी आहे सो निशानियूं कहिड़ियूं आहिनि हिकु त इन जी डबी गुलाबी रंग जी आहे ऐं टॉप लेफ्ट साइड ॾांहुं गुलाब जो गुल छपियल आहे सो बि गुलाबी कलर में ऐं हेमे नेचुरल्स लिखियल आहे ब्लैक राइटिंग में इहे तव्हां निशानी तौर ज़हन में रखी करे पोइ तव्हां इहा परचेस करे सघो था ऐं सिर्फ़ इहो ई न तव्हां जॾहिं वठी अचो पिया त हिन सां गॾु पंहिंजी प्यारी प्यारी सेल्फी जेकी आहे उहा असांखे व्हाट्सएप ते सेंड कंदो तव्हांजी उहा सेल्फी असीं कुरानदाज़ी में शामिल कंदासीं ऐं एवरी वीक जेका कुरानदाज़ी थींदी आहे सेल्फी विनर ऑफ द वीक खे 500 रुपियनि जो कैश इनाम मिलंदो आहे त तव्हां बि 500 रुपियनि जो कैश इनाम खटी सघो था सिंपली हेमे ब्यूटी क्रीम सां गॾु पंहिंजी सेल्फी सेंड करे सो दोस्तों सेल्फी सेंड करण लाइ नंबर आहे व्हाट्सएप जो 03000113488 इन खां अलावा हेमे ब्यूटी क्रीम जेका आहे उहा तव्हांजे शहर में जेकॾहिं न मिले या इन मुतालिक़ तव्हांखे का बि मालूमात घुर्जे त तव्हां इन्हनि जे नंबर ते राबितो करे सघो था राबते जे लाइ इन्हनि जो नंबर आहे 03000316713547 नंबर वन सेकेंड मां रिपीट कयां पियो तव्हां नोट करे सघो था 03-3613-470 इन नंबर ते तव्हां कॉल करे हेमे ब्यूटी क्रीम जे बारे में इन्हनि खां मालूमात वठी सघो था इन्हनि खां पुछी सघो था त तव्हांजे शहर जे वेझे कहिड़े स्टोर ते हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम अवेलेबल आहे सो लिसनर्स बिल्कुल हेमे ब्यूटी क्रीम जे बारे में तव्हांखे वधीक बि मालूमात मां ॾींदो रहंदुसि ऐं इहो बि ॿुधाईंदो हलंदुसि त हिन जी तरीक़ा इस्तेमालु छा आहे ऐं इहो बि तव्हांखे ॿुधायां त अॼु जे प्रोग्राम में सेगमेंट आहे गुजारत गुजरी ऐं अव्हां जी फरमाइश बिल्कुल दोस्तो इन गुजारत गुजरी सेगमेंट में अव्हां जे लाइ जेका गुजारत आहे उहा कहिड़ी आहे मां तव्हांखे ॿुधाईंदुसि अॼु जी गुजारत आहे त उहो केरु आहे जेको गूंगो ॿोड़ो ऐं अंधो आहे पर हमेशा सच ॻाल्हाए थो तमामु सवली गुजारत आहे उहो केरु आहे जेको गूंगो ॿोड़ो ऐं अंधो आहे पर हमेशा सच ॻाल्हाईंदो आहे ठीकु आहे इन जो जवाब तव्हां प्रोग्राम में शामिल थी ॾींदो ऐं अव्हां जी फरमाइश सेगमेंट में सिंपली तव्हां पंहिंजे फेवरेट सिंगर जी फरमाइश कंदो जंहिं सिंगर जा वधीक वोट हुया उहो सिंगर मां प्रोग्राम में शामिल कंदुसि ऐं कल जीअं मां ॻाल्हि करे वियुसि अॼु वध खां वधि तव्हांजी लाइव कॉल्स इंक्लूड कंदुसि त तव्हां लाइव कॉल करे सघो था असांजो नंबर आहे 03000113488 सो हींअर प्रोग्राम जी शुरूआत में तमामु प्यारो प्यारो कलाम अवां सभिनि जे लाइ प्ले करे छॾियो आहे तव्हां कलाम ॿुधो ऐं मूंसां गॾु रहो रौनक महफ़िल में पूरे 8 वगे ताईं

0: चमकती नर्म और बेदाग जेल एक क्रीम की दूरी पर। हेमी नेचुरल्स के पिंक डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम, इसमें शामिल है SPF 30 जो सूरज के नुकसानदेह श्वाओं से तहफ्फुज़ दे, कोचिक एसिड जो जिल्द से दाग धब्बे खत्म करे, और विटामिन सी, ग्लूटाथायोन और आर्बोटिन जैसे वाइटनिंग एजेंट्स जो आप खुद ही एक खूबसूरत चमकदार और नेचुरल ग्लो। हेमी नेचुरल्स पिंक ग्लो ब्यूटी क्रीम, हर दिन हो एक नया ग्लो, एक नया कॉन्फिडेंस। Pink Diamond Glow by Hemi Naturals.
1: जी दोस्तों, बिल्कुल रौनक महफिल प्रोग्राम में जबरदस्त कलाम तमाम ॿुधो, उम्मीद आहे अव्हां खे पसंद आयो हूंदो। सो इन खां अलावा तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त रौनक महफिल प्रोग्राम में अॼु अव्हां जे लाइ गुड न्यूज़ आहे लाइव कॉलर्स जे लाइ, छाकाणि त अॼु व्हाट्सएप जेको आहे न असांजो जवाब ॾेई बीठो आहे, ऐं इन जे लाइ लाइव कॉलर्स अॼु वध खां वध प्रोग्राम में शामिल थींदा, ऐं व्हाट्सएप वारनि खां अॼु जे लाइ माज़रत। अॼु व्हाट्सएप वारा जेके आहिनि उहे जॉइन न करे सघंदा, बल्कि व्हाट्सएप जे ज़रिए जॉइन न करे सघंदा, बाक़ी लाइव कॉल त नंबर ऑन आहे, कॉल

0: हूंदो सो इन खां अलावा तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त रौनक मैसल प्रोग्राम में अॼु अव्हां जे लाइ गुड न्यूज़ आहे लाइव कॉलर्स जे लाइ छाकाणि त अॼु व्हाट्सएप जेको आहे न असांजो जवाब ॾेई बीठो आहे ऐं इन जे लाइ लाइव कॉलर्स अॼु वध खां वध प्रोग्राम में शामिल थींदा ऐं व्हाट्सएप वारनि खां अॼु जे लाइ माज़रत अॼु व्हाट्सएप वारा जेके आहिनि उहे ज्वाइन न करे सघंदा बल्कि व्हाट्सएप जे ज़रिए ज्वाइन न करे सघंदा बाक़ी लाइव कॉल त नंबर ऑन आहे कॉल यू जी दोस्तों बिल्कुल रौनक महफ़िल प्रोग्राम में ज़बरदस्त कलाम तव्हां ॿुधो उमेद आहे तव्हांखे पसंदि आयो हूंदो सो इन खां अलावा तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त रौनक महफ़िल प्रोग्राम में अॼु अव्हां जे लाइ गुड न्यूज़ आहे लाइव कॉलर्स जे लाइ छाकाणि त अॼु व्हाट्सएप जेको आहे न असांजो जवाब ॾेई बीठो आहे ऐं इन जे लाइ लाइव कॉलर्स अॼु वध खां वध प्रोग्राम में शामिल थींदा ऐं व्हाट्सएप वारनि खां अॼु जे लाइ माज़रत अॼु व्हाट्सएप वारा जेके आहिनि उहे ज्वाइन न करे सघंदा बल्कि व्हाट्सएप जे ज़रिए ज्वाइन न करे सघंदा बाक़ी लाइव कॉल त नंबर ऑन आहे कॉल यू जी दोस्तों बिल्कुल रौनक महफ़िल प्रोग्राम में ज़बरदस्त कलाम तव्हां ॿुधो उमेद आहे तव्हांखे पसंदि आयो हूंदो सो इन खां अलावा तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त रौनक महफ़िल प्रोग्राम में अॼु अव्हां जे लाइ गुड न्यूज़ आहे लाइव कॉलर्स जे लाइ छाकाणि त अॼु व्हाट्सएप जेको आहे न असांजो जवाब ॾेई बीठो आहे ऐं इन जे लाइ लाइव कॉलर्स अॼु वध खां वध प्रोग्राम में शामिल थींदा ऐं व्हाट्सएप वारनि खां अॼु जे लाइ माज़रत अॼु व्हाट्सएप वारा जेके आहिनि उहे ज्वाइन न करे सघंदा बल्कि व्हाट्सएप जे ज़रिए ज्वाइन न करे सघंदा बाक़ी लाइव कॉल त नंबर ऑन आहे कॉल यू मेंट्स आहिनि ऐं इन जो जेको मोटो आहे तव्हांखे नेचुरल गिलो ॾे पियो मां سمجھا پہ فائدے وارو ہے سو لیٹس سی فرسٹ کالر اساں سان گڈ کیئر موجود ہیں السلام علیکم جی السلام علیکم کالر جے کن اڈے مسئلہ پہ کن بلکہ کالرز بھی مسئلہ پہ کن جے کے ماں ریزالو کرنے کوشش کیاں پیو سو اچوں پیا 888 وارے میسجز دا سلطان پور کا عبد الغنی جنید صاحب جوائن کروا لکھن پیا بابر صاحب ہیمے نیچرلز بیوٹی کریم نائس ہے اینڈ جواب ہے ओके जी आपका जवाब मैंने नोट कर लिया है और सलाम कहा है आपने नादिर अली गबोल को एंड पठान जुने जो को वालेकुम अस्सलाम अब्दुल गनी जुने जो साहब आपका बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम बाबर भाई क्या हाल है सिकंदर अली जावरी अरसलान अली जावरी एंड कामरान अली जावरी जावरी रिजवान अली जावरी गुट रोशन अली जावरी खां अलीआबाद स्टॉप से हमारे साथ है आपका बहुत शुक्रिया जावरी साहब एंड इन खां अलावा जो है 888 वारा मैसेज थोड़ा स्लो आहिनि बाक़ी लाइव कॉलिंग जे लाइ नंबर मूं ऑन कयो आहे तव्हां कॉल करे सघो था ऐं लिसन तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हैमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जो हिकिड़ो इहो बि फ़ाइदो आहे त लेट सपोज तव्हां हैमे ब्यूटी क्रीम कुझु अर्सो इस्तेमालु कयो था ऐं पोइ अॻिते हली इस्तेमालु करणु छॾे पिया ॾियो त इन प्रोडक्ट जो तव्हांखे हीउ चवंदा साइड इफेक्ट न मिलंदो छाकाणि त काफ़ी ब्यूटी प्रोडक्ट्स अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जेके तव्हां इस्तेमालु कयो था वक़्ती त ठीकु आहे तव्हांखे फ़ाइदो मिले वियो पर कुझु अर्से खां बाद में उहो फ़ाइदो जेको आहे त साइड इफेक्ट्स में तब्दील थी वेंदो आहे पर हैमे नेचुरल्स वारनि इहा दावा कई आहे त हिन जी जेका इहा प्रोडक्ट आहे हैमे ब्यूटी क्रीम या इस्तेमालु करण सां तव्हांजे चेहरे तां दाग धबन निशानात जो ख़ात्मो थी सघे थो ऐं तव्हां पाण जेको आहे न अंदाज़ो लॻाए सघंदव त वाक़ई यार हैमे में जेके नेचुरल इनग्रीडियंट्स आहिनि इहे अव्हांजे चेहरे जी स्किन खे बाक़ाइदा तौर ते फ़ाइदो ॾियनि पिया तो फर्स्ट कॉलर मौजूद है लेट्स सी लाइन ते गड़ी केर है अस्सलाम वालेकुम
1: अरे वालेकुम सलाम
0: साईं केर सा गलायो भा
1: आई अब्दुल मजीद बिड़े काने सा गलाया ते भा
0: अदा अब्दुल मजीद केड़ो हाल आ ठीक आयो तबे ठीक है
1: आई केर अल्हम्दुलिल्लाह
0: साईं अदा यो बतायो त तां जी केड़ी फरमाइश है केड़ो सिंगर बुधन चाहिंदो साईं
1: असा जी अमन गुरुद्वारा
0: साईं अहमद मुगल ठीक है सो अहमद मुगल के डेडिकेट कंदो अदा ठीक है ठीक है तांजी वरी मेहरबानी सो दोस्तों अहमद मुगल जी ने फरमाइश कई है लेट्स सी अगते फरमाइश केंजी अचे पई मां ट्रे कॉलर शामिल करे पई वो सिंगर प्ले कंदो सवा सबिन जे लाइ आई लिसनर्स तव्हांखे मां हेल्पलाइन नंबर भी बुधाईंदो हलां छाकाणि त काफ़ी सारा अहिड़ा लिसनर्स आहिनि जेके चवंदा आहिनि त बाबर

0: खाण नरम चमक ऐं साफ जिल्द रुगो हिक क्रीम जी दूरी ते पेश आहे हेमे नेचुरल्स जी डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जंहिं में शामिल आहे एसपीएफ 30 सिज जे नुक़सानकार किरणनि खां बचाव लाइ कोजिक एसिड ऐं जिल्द मां दाग धप्पा निशानात ख़तम करण लाइ विटामिन सी ग्लूटाथायोन ऐं आर्बुटिन जेके ॾियनि तव्हां जे चेहरे खे कुदरती साफ़ ऐं चमकदार ग्लो रोज़ानो इस्तेमाल करियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम ऐं हासिल करियो नओ ग्लो नओ एतमाद हर ॾींहुं हुजे हिकु नओ ग्लो हिकु नओ कॉन्फिडेंस हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम
1: अच्छा ॾिसो बिल्कुल ज़बरदस्त गानो तव्हां शमन अली मीरा जी आवाज़ में ॿुधियो उमेद आहे अव्हां खे पसंदि आयो हूंदो सो प्रोग्राम में बाक़ी 15 मिंटनि जो साथ रहियो आहे ऐं गुजारत अॼु जी चए पई त उहो केरु आहे जेको गोंगो ॿोड़ो ऐं अंधो आहे पर जेको आहे त हमेशा सच ॻाल्हाए थो इन जो जवाब तव्हां प्रोग्राम में शामिल थी ॾियो पिया ऐं अव्हां लाइव कॉलेज ज़रिए ज्वाइन करे सघो था कल्ह जीअं मूं ॻाल्हि कई त सुभाणे मां वधि खां वधि कॉलर्स खे शामिल कंदुसि त अॼु कॉलर जो वारो आहे उहे लाइव कॉल करे सघनि था नंबर आहे 03000113488 ऐं मैसेज जे लाइ तव्हां एस के आर लिखो स्पेस ॾियो पंहिंजो मैसेज 888 ते यानी 8881 ते अव्हां सेंड करे छॾियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जेका आहे इन जो हिकिड़ो इहो बि फ़ाइदो आहे त इहो तव्हांजे चेहरे ते अगरि पिंपल्स आहिनि या एक्नी जो प्रॉब्लम आहे या डार्क सर्कल्स आहिनि या वरी चेहरे ते झुरियूं अची वियूं आहिनि त इहे तव्हांजी दूर थी सघनि थियूं ऐं गॾो गॾु अधा हुजनि या अधी हुजनि यानी हर टाइप जी स्किन जे लाइ फ़ाइदेमंद आहे त तव्हां इन जो फ़ाइदो हासिल करे सघो था ऐं गर्मियुनि जी मुंद में स्पेशली ही तव्हांखे सन प्रोटेक्शन ॾे पई हाणे ईअं हरगिज़ न करणो आहे त तव्हां हेमे ब्यूटी क्रीम लॻाए वरी पिया ईअं उस में घुमंदा वरितो ऐं चओ असांखे सन प्रोटेक्शन मिले पई ईअं नाहे ठीकु आहे तव्हांखे इन जो जेको तरीक़ा इस्तेमालु हिन रिकमेंड कयो आहे सभ खां सुठो हिन तरीक़ो इहो ॿुधायो त राति जो सुम्हण खां पहिरियां चेहरे खे तव्हां वॉश करे वठो देन चेहरे ते हेमे ब्यूटी क्रीम लॻायो जिते दाग दॿा मुहिड़ा आहिनि उते वधीक क्वांटिटी में लॻाइणी आहे पोइ तव्हां जॾहिं सुबुह जो उथो पिया त चहिरो वॉश करे वठंदव ऐं अगरि तव्हां राति जो नथा लॻाए सघो तव्हांखे टाइम नथो मिले त तव्हां ॾींहं में को बि टाइम यानी कलाकु कढी करे पंहिंजे चहिरे खे वॉश करे पोइ चहिरे ते हेमे ब्यूटी क्रीम लॻायो ऐं पोइ तव्हां कलाक खां बाद में चहिरो धोई वठो हाणे तव्हां मुसलसल कंदा ईंदव न जॾहिं तव्हां रुटीन लाइफ में हेमे ब्यूटी क्रीम खे शामिल करे छॾींदो देन तव्हांखे सन प्रोटेक्शन मिलंदी अवांजी स्किन खे पोइ जेके सिज जा मुज़िर असरात आहिनि उन खां प्रोटेक्शन मिली सघे थी छाकाणि त हिन में SPF 30 शामिल आहे इहा हेमे ब्यूटी क्रीम वारनि जी दावा आहे ऐं हिन दावा ते ई पूरा लथा आहिनि यानी हिन जो वरी फ़ैसिलो कयो आहे असांजी लिसनर्स जिन इस्तेमालु कई आहे हुन जो फीडबैक तव्हां पाण ॿुधी सघंदा आहियो त हेमे ब्यूटी क्रीम हुननि खे केतिरो न बहितर फ़ाइदो ॾिनो आहे त तव्हांजे शहर में ईज़ीली तव्हांजे वेझे स्टोर ते अवेलेबल आहे जेकॾहिं नथी मिले या वधीक तव्हां का बि मालूमात हासिल करणु चाहियो पिया त जी हिननि जो हेल्पलाइन नंबर आहे 0336-7135-407 जी हा 0336-7135-407 ते तव्हां कॉल करे हेमे ब्यूटी क्रीम जे बारे में हिननि खां मालूमात वठी सघो था सो हींअर प्रोग्राम में जेको आहे त मां कुझु कॉलर खे शामिल कयां पियो बल्कि असां लाइव कॉलिंग वारो नंबर थोरो हैंग थी वियो आहे जंहिंखे मां हाणे सही कयो आहे तव्हां हिन कॉल करे सघो था नंबर मां तव्हांखे ऑलरेडी ॿुधाए चुको आहियां 03000113488 सो हिकिड़ो ॿियो मुंहिंजी प्ले लिस्ट में गानो आहे जेको मां अव्हांजे लाइ प्ले कयां पियो तव्हां गानो ॿुधो फ़ाइज़ा अली जी आवाज़ में ऐं इंजॉय कयो ऐं रौनक महफ़िल में 8 वॻे ताईं गॾु आहियूं गुजारत बि मां तव्हांखे ॿुधाए चुको आहियां ऐं हिन गाने जे दौरान ई तव्हांजी लाइव कॉल्स इंक्लूड कयां पियो मूंसां गॾु अचो बल्कि गाने खां पहिरियां ई लाइव कॉलर खे शामिल कयां पियो छाकाणि त हाणे लाइव कॉलिंग वारो नंबर ओके थी चुको आहे अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अलहमदुल्ला दादा तव्हां पंहिंजो ॿुधायो भाउ जी जी अदा कहिड़ो हाल आहे ख़ुशि आहियो न भाउ जी अलहमदुल्ला अदा जेको आहे त अव्हांजी फ़रमाइश कहिड़ी आहे सेगमेंट अव्हांजी फ़रमाइश में कहिड़ो सिंगर ॿुधणु चाहींदव ममताज़ मौलाई अदा ॿीहर ॿुधायो आवाज़ क्लियर कोन्हे तव्हांजो तव्हांजो आवाज़ क्लियर कोन्हे सॉरी अदा तव्हांजी कॉल खे डिस्कनेक्ट कयां पियो ऐं नेक्स्ट कॉलर जी तरफ़ मूव ऑन कंदुसि लेट्स सी नेक्स्ट कॉलर केर आहिनि सो नंबर आहे 03000113488 अस्सलाम वालेकुम जी केर था ॻाल्हायो अदा जी लगारी साहब अव्हां जेको आहे त कहिड़ो सिंगर ॿुधणु चाहींदव ममताज मौलाई। ओके, कैसे नाव कहना चाहेंगे? जी जी भा,
2: एतिरा प्रोग्राम कंदा आहियो।
1: अच्छा, कहिड़ो कहिड़ो इलाइक़ो आहे तव्हांजो? दादू में खैरपुर नाथन शाह। चलो अदा ठीकु आहे, असां ॾिसूं पिया तव्हां वटि। जी जी, ओके अदा, ओके। तव्हां वटि नेटवर्क जा सिग्नल्स ई कम्पलीट कोन्हनि, तव्हांजो आवाज़ ई क्लियर कोन थो अचे। बहरहाल मां कोशिशि कयां पियो त तव्हांजो जेको आहे इन मसले खे रिज़ोल्व करायां। सो हींअर जेको आहे दोस्तो ममताज मौलाई जी फरमाइश आई आहे, सो मां ममताज मौलाई जी आवाज़ में गानो थो प्ले कयां। तव्हां गानो ॿुधो, इंजॉय कयो ऐं रौनक महफ़िल में मूंसां गॾु रहिजो पूरे 8 वॻे ताईं। सो लेट्स इंजॉय दिस सॉन्ग।

हाण नरम चमक ऐं साफ जिल्द रुगो हिक क्रीम जी दूरी ते पेश आहे हेमे नेचुरल्स जी डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जंहिं में शामिल आहे SPF 30 सिज जी नुक़सानकार किरणनि खां बचाव लाइ कोजिक एसिड ऐं जिल्द मां दाग धप्पा निशानात ख़तम करण लाइ विटामिन सी ग्लूटाथायोन ऐं आर्बुटिन जेके ॾियन तव्हां जे चेहरे खे कुदरती साफ़ ऐं चमकदार ग्लो रोज़ानो इस्तेमाल करियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम ऐं हासिल करियो नओ ग्लो नओ एतमाद हर ॾींहुं हुजे हिकु नओ ग्लो हिकु नओ कॉन्फिडेंस हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम

सो इन सस बिल्कुल जबरदस्त गानों तो मां एंजॉय कयो ऐं प्रोग्राम जो वक्त भी तकरीबन पंहिंजी पुराणी ते पहुची चुको आहे। व्हाट्सएप जा वॉइस नोट्स हुया मूंखे न हुया, मूंखे अॼु थोरी कमी महसूस थी, छाकाणि त वॉइस नोट्स हूंदा आहिनि त मूंखे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे। बहरहाल अॼु लाइव कॉलर जो वारो हुयो ऐं लाइव कॉल्स शामिल करण जी मां भरपूर कोशिश कई। प्रोग्राम में गुज़ारत हुई त उहो केरु आहे जेको गोंगो बोड़ो ऐं अंधो आहे, पर हमेशा सच ॻाल्हाए थो त दोस्तो उहो आहे मिरर यानी आइनो, ठीकु आहे। ऐं जिन जिन असांखे 888 ते सही जवाब ॾिना उनमें सभ खां पहिरियां अब्दुल गनी जुनी जो साहब आहिनि, ऐं ॿियनि मूंखे कंहिं बि जवाब कोन ॾिनो आहे, जस्ट ईअं मैसेज मोकिलिया अथनि। सो अब्दुल गनी जुनी जो साहब जे लाइ मां वेंदे वेंदे प्यारो प्यारो गानो प्ले कयूं थो वञा। ऐं दोस्तो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम वारा जेका आहिनि अवां जो वेट कंदा आहिनि अवां जी सेल्फीज़ जो, स्पेशली तव्हां जेके हेमे ब्यूटी क्रीम इस्तेमालु कंदा आहियो ऐं सेल्फीज़ मोकिलींदा आहियो त ही जेके आहिनि अवां जे हिन फीडबैक जो इंतज़ार कंदा आहिनि, छाकाणि त हिननि तमामु घणी महिनत खां बाद में मार्केट में इहा प्रोडक्ट लॉन्च कई। ऐं मार्केट में जॾहिं इहा प्रोडक्ट लॉन्च कयनि त इन जो फीडबैक जे लाई मुंतज़िर हिन लाइ हूंदा आहिनि त हिन में जेके SPF 30 कॉजिक एसिड ऐं ग्लूटाथायोन शामिल कयो अथनि, इन जी ख़्वाहिश आहे त इन जो सभई फ़ाइदो वठनि, त तव्हां बि फ़ाइदो वठी करे इन जो फीडबैक ॾेई सघो था। 330 खां 360 रुपियनि ताईं इन जी क़ीमत आहे ऐं तव्हांजे शहर जे वेझे स्टोर ते ईज़ीली तव्हांखे अवेलेबल थी सघे थी। सो दोस्तो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जेका आहिनि इहा तव्हां जॾहिं इस्तेमालु कयो पिया त तव्हांखे बाक़ायदा तौर ते हिन जो फ़ाइदो मिले पियो ऐं हर टाइप जी स्किन जे लाइ फ़ाइदेमंद आहे, स्पेशली तव्हां इन उन्हारे जी मुंद में इन खां सन प्रोटेक्शन वठी सघो था। त दोस्तो वधीक मालूमात लाइ हिन जो हेल्पलाइन नंबर आहे 0336-7135-407। जी हा 0336-7135-407 इन नंबर ते तव्हां कॉल करे हेमे ब्यूटी क्रीम जे बारे में इन्हनि खां मालूमात वठी सघो था। त वेंदे वेंदे तमामु प्यारो प्यारो गानो आहे शैला गुल जी आवाज़ में, अवां सभिनि जे लाइ प्ले करे छॾियो आहे, तव्हां गानो ॿुधो इंजॉय कयो। अॻिले प्रोग्राम ताईं मूंखे ॾियो इजाज़त, सदाई गॾु, अलाह हाफ़िज़ ऐं ज़िंदगी बख़ैर।

के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज। GFM 90.4।